0: सरकार प्रशासन विभाग संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन एफएओ तथा अपराध सीआईएन द्वारा प्रतिक्रिया लागि जारी सन्देश
1: सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन तपाईँहरूले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर डट कम

0: क्या आई रही तो कुछ भी है घर पर रखी क्या कर रही
1: है
0: क्या कर रही
1: है एक रात

que era un workshop mecànic on podia ajudar, que si que et van dir que no era, però no era coi de tot el que s'ha de mantenir aquí, un tant que era un home que va anunciar que li va ser a la fabulitat que va dir que no era tot el que era així, però que ell ja ho va anar i un grup que s'ha de mantenir un cop. Nepal, Kampur, Dulubar, Zanaki, Lodar, Kais, Kale, Kama, Esno, Somoset, Kikieku, Kirsi, Kente, Lodar, Susana, Alkali, Vital, Kali, Vino, Kuro. Han, Patima, Kultur, Tron, Hazar, Pansa, Et, Hapisia, Kalkit, Yerki, Temi, Mati, Yerki, Hazar, Pansa, Et, Hazar, Kale, Kumar, Tan, Kiti, Kali, Kutsa, Yerki, Hazar, Kiti, Hazar, Pansa, Et, Injektar, Kata, Parma, Kham, उत्पादन करें या जनरली चलाएं कुछ धर्म समुदाय में इस भाषा को दस गुटी पर और काटी के कदम पर कुछ दस गुटी थीरा विधि देखिए को थीरा विधि मार देखिए को अन्य लोग बताऊंगा कोई मापार को धर्म भगवान को छापल में परमाणु में मिट्टी का परंपरागत विधि तैयार करें कुछ धर्म भगवान मटामा बरखा मुद्दी देशमंडल गुरुआ खरगुरुआ अध्येता पंडिता तथा धर्म कल्याणी सभा को पटनीयर को सभा की धाम दशम मनाने तिथि का विधि मार्ग ग्रुप का काम करने निर्णय करें को धर्म कल्याणी सभा का केंद्र को सारी से जुड़ रहा तो चोर है असुस 25 बजे जमारा रखे 31 बजे पंचोगी के लिए रखाती ये कथित चित्रा चित्री पुजी निर्णय करें को जानकारी दे पिता जी ने प्रयाखंड में टीका लगाने पर माता ने माता को प्रणाम का वजह टीका लगाने निर्णय करे को जानकारी दी हुआ माता ने बताया परमेश्वर स्वामी दान को अधिक चंद्रगण प्रसाद चौधरी को अधिक चंद्रमा को

们加入某些一个协助着他一个比较自然不用做那么大的某些把老人给发生出第三个大的地方或者是他们打个战斗一个格调子他你说的某些陪你把现在的朋友陪在了你都现在在那个玩现在本身我们告诉了前几天的他说话说了或许对手的没有他或是他们把他们在一起来我看到不一样的也当没了陪他们可能Cuman beli kapal ikan ke Rockstar Palace Sunny Beer Barat Ganti Libar Pun Pemilakan Dan kapal ikan ke Patut Si Rasmi Barang Komisar Adina Oleh Pintari Ganti Libar Pun Pemilakan Cuman Setelah Ajo Tata Pintara लेकिन आज प्लेटिंग का काम मौसम प्लेटिंग का काम कर संख्या ठीक पर भी प्रदूषण मौसम प्लेटिंग में करने जो मैटी

सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै वित्तीय पूर्णाना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ

0: संध्या समय छ बजे हमार संदेश स्वागत में संग्रह रमेश प्रसंग मई बिंदु
1: समुदाय में समय दुर्गा भवानी मूर्ति स्थापना कहीं सामूहिक पूजा पाठ करना चलन बढ़ ही गई बा सुनी थप सामग्री सहकर्मी बिंदु चौधरी से
2: भगवान की कृपा हमारे पर हुई कारण ये सब कुछ नहीं हमें पूर्व

0: चित्रा मिला मैं जन्म संचालन मेवा सरकारी बात अच्छी प्रतोष कुमार करुणिया का अनुसार आज दिन दो बजे शोभा यात्रा सहित कार्यक्रम को शुभारम्भ कर रात 8 बजे नेपालगंज को महानगर पालिका का नगर प्रमुख प्रशांत विष्ट औपचारिक का उद्घाटन करना कार्यक्रम करगा का हरेक दिन संध्या 8 बजे से राज्य 12 बजे संचालन दिया राम लीला व श्री राम जन्मोत्सव धनुष रावण वट को राज्याभिषेक लगायत का रामायण का महत्वपूर्ण प्रसंग नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिया प्रचार मंत्री आदित्य गुप्ता जानकारी ये रामलीला मंथन लगाकर भारत को वृंदावन से राधा रमन को नेतृत्व में 25 सदस्य कलाकार टोली नेपालगंज आगे समिति के अनुसार मंथन कलाक आवश्यक पूर्व तैयारी पूरा करेगा श्री पश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2083.38 करोड़ 39 लाख का बजट सरकार गठन विधायक 2 महीना पश्चात आर्थिक मामला मंत्री चक्र बहादुर मल्ल 4 आर्थिक वर्ष का बजट बजट सभा में प्रस्तुत करने मल्ल तत्कालीन अर्थमंत्री विक्रम सिंह धामी जनक आकार में जो बजट प्रस्तुत कर सरकार से स्वरूप के कोरोना शीर्षक में आंतरिक राजस्व परिचालन 1.72 करोड़ नेपाल सरकार से प्राप्त होने 10.24 करोड़ संघीय रोयल्टी बांटने से 7 करोड़ नेपाल सरकार का वित्तीय समानीकरण अनुदान 9.63 करोड़ आपका आर्थिक वर्ष के वर्ष बजट महीना 9.35 करोड़ संघीय सशस्त्र अनुदान से 6.03 करोड़ अनुमान के बाद संघीय समपूर्ण अनुदान से 38 करोड़ और विशेष अनुदान से 52 करोड़ अनुमान के जिला तत्कालीन कमल बहादुर शाह नेतृत्व को सरकार से एक प्रसार में यह बजट प्रदेश सभा से पारित होने से हिमालय नेकपा का गठबंधन सरकार बनेगा हिमालय का समर्थन में नेकपा का अपराध भट्ट मुख्यमंत्री पर लग 2 महीना पश्चात बजट आये हो
1: Thank you.

0: So, this guy like you call my baby a colorful, Bacardi, Dal, Orma, Sugar, you said, Kaza, or one of his money. This is a colorful Kaza Kaira, but you can't be poly house.
1: We tell him about junk food like in a side brown, Pussilo Kaza like Prasan brown. We tell him about the junk food became Negotiko, Negrani brown. हम सालों पहले से ही बाल बालिका को स्वस्थ सुरक्षित बनाना सकता
0: है। अन्य का पोषण
1: जो फुटबॉल फुल विजन इंटरनेशनल नेपाल रात को रात से आया
2: सामाजिक रूपांतरण के लिए सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन